हाँ जी, नींद से उठ के आ जाए जी, हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर ले, अपनी सी प्यारी सी आवाज, खूबसूरत सी अल्फाज को शामिल करिए हमारे साथ इस नाकस मैडिक पाकिस्तान में। वाने वाला भाई, टांग वाला पासी कर यार, लेके दे कमी कमी कमी पूरी बता सुख विखिए नरिश्ते उदे प्रोग्राम के बरखा कलम सड़ी मुशी पखीराली दर तो आयमा नुनन चिकम दे तासु राशि इज्जतासु लरागे लेमा नुबिया बिल्कुल प्रोग्राम की मासा हाजिरी हो लगे हुई शामिल की दी कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम की और अक्सर मुंगला दस यू एनर्जेटिक प्रोग्राम हम रावड़ा दे राजई मास्टर पयो प्रोडक्ट बांधने खबर कोई पल दस साइड न चिकम दे सुसैन की सहम जोड़कड़ी हुई माता सुल चिकम दे टोल प्रोडक्ट रिवाइंड कर कम प्रोडक्ट नवी पाती पाकि की मुक्सरा पागी के मुख्य चिकम दे चूंकि दो किस्म फेस वॉश खुम शामिल है पागा फेस वॉश की चिकम दे बिल्कुल यो द राइस यानी द चावल वाला लेकिन उस चिकम दे चावल वाला स्किन फेस वॉश चिकम दे तास यूज कवले शेप द चिकम द ऑयली स्किन वी लेकिन और में दर ता आसान को द चा स्किन चिकम दे द ऑयली स्किन वी नो अगर इस्तेमाल की समुंग द चावल वाला फेस वॉश उस चिकम दे अस ओके जी पकागज वाय के दर तू लिकम का पकानी वाय का परश वाय का सड़क वाय का दीवाल वाय लक कता सुवाय ची वाल चाकिंग रा तू का हसा मगम दर तमुंगा को लक नूर द खुदाई ना सखवाड़ी

0: बिल्कुल जी, फिर मैं कागज पर लिखूंगा जिस तरह नासी अकबाल कह रही है कि माँ दबा कागज लिखा, तो फिर मैं आप लोगों की भी कागज पर लिख के देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं स्टोन पर भी लिख के देता हूँ, इज़रा कॉस्मेटिक पाकिस्तान में रिजल्ट मौजूद है, 110% इसमें रिजल्ट मौजूद है। तो फिर जितनी भी हमारी आटक छोटा लाहौर जहाँ भी हमारी उर्दू सुनने वाले हैं, यहाँ तौर पर नौहार नौशेरा में या टोपई तुरबेला पटाबात में, तो आप आए हमारी साथ प्रोग्राम में शराकत कर लें, अपनी आवाज को शामिल कर लें, ताकि हमें भी पता लग जाए ना कि हमारी ये प्यारी प्यारी उर्दू और सिंहलिस्ट भी है ना। तो 0335 435 3515 0335 435 3515 हु इज द लकी कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, आवाज आ रही
0: دیوانه زو از دما چوم ها گوره اوس پاواز ٹکشتی. السلام علیکم.
1: هلو
0: آواز زمام درسی خوچی تو اس خبری نکی نو زبو اسو کما نو بس خبری کوئی کنی جی واپسو کزام.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुमैल डीआई खान से। चंद अरसा पहले मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था, जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल दे, अवेला जी सुनत अमल दे।
5: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो।
4: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
5: और दोनों मालूमातों दे पारा पदगल नंबर काल कवले शे
4: 0319-55-23-404।
6: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवी यो कुदरती चमक, चमक। आया स्तासु पे विख्तानों की खुशकिदा, विख्तान मो गुरजेगी, विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी कुमचे स्तासु दे विख्तो खुशकी खारख प मुकमल तो खत्म भी। नो बिल्कुल जी, हम उस जानला इंतखाबो की जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल चिहाइस्त मो यो फुद्वशी। नो द मिलाविदो पता याद साथ फ्रंटियर फर्नीचर चारफाई नाइलोन मार्ट मदे मुकाबिल गली गुलाबी फम टांग सिटी। राबता नंबर 0343-912-17-45।
7: चाहतो के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

इसी तरह से अगर आप घर में सोए हुए हैं, रात का वक्त है, तो आपको लगता है कि कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका मकसद भी ठीक नहीं है उसके, क्योंकि जाहिर है रात को अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तो उसके अगर इरादे ठीक नहीं है और वो ये ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वार्न करें, अगर वो नहीं रुकता तो आप उसको शूट कर दें। ये भी कानून आपको इख्तियार देता है कि आप उसको शूट कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, ख्वातीन आपके साथ हैं, और कोई ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और आपको अंदेशा है कि खुदा न खास्ता ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो अगर आपके पास असलहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो आप उसको शूट कर सकते हैं ऐसे शख्स को। ये कानून आपको मुकम्मल इस चीज़ की इजाज़त देता है, तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है, बल्कि कानून आपको इस हद तक भी तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है कि अगर आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी, रोड पे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को लूट रहा है, आपको नहीं लूट रहा, या किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको नजर आ जाता है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो मुलजिम है, वो जो काम कर रहा है, उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसके लिए क्या है कि आपके पास अगर असलहा हो तो वो लाइसेंस्ड असलहा हो। हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के लिए असलहा साथ रखें, लेकिन लाइसेंस्ड असलहा। अब ये हमारे इलाके में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंजाब में घूम रहे हैं, आप लाहौर में हैं, आप वहाँ तो रात को 2-3 बजे आप घूम रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता, लेकिन हमारे इलाकों में आजकल जो है वो हालात बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी जो मैंने समझा कि मैं अपनी आवाम तक रखूँ, आवाम को बताऊँ कि जी जो तहफ़ फराम करना है वो रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर रियासत उसमें नाकाम होते हुए हमें नज़र आती है या नज़र आए तो वहाँ पे आवाम अपने आप को ख़ुद भी तहफ़ फराम कर सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं बयान करना चाहूँगा वो है एतबार। आजकल आप यकीन, एतमाद, एतबार किसी पे भी ना करें। आजकल आपका दोस्त, आपका करीबी जानने वाला वही आपका दुश्मन हो सकता है, वही आपको एतमाद में, एतबार में संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में ऐसा वाकया हुआ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो मेरे करीबी लोगों ने पहुंचाया। अब वो चूँकि आपको एतमाद होता है, आपको यकीन होता है, आप खुद को जो है वो तैयार नहीं रखते किसी भी खतरे के

अच्छा, तो FIR दर्ज करवाते वक्त अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी, चूंकि बहुत सारे वकूए ना मालूम होते हैं, किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन पश्तों का इलाका

है, रिवाज है, लोगों को पता जरूर चल जाता है कि मेरा मुजरिम कौन है, किस कौन मेरा दुश्मन है, किसने मेरे साथ ये काम किया है। लोगों को इस चीज़ की खबर ज़रूर होती है कि मेरे प्यारे को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाला कौन है। लेकिन चूंकि जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है उसने अकेले में ढूंढ के पहुंचाना है, तो चश्मदीद गवाहान जो हैं वो पराए लोग होते हैं, अपने बहुत कम होते हैं। लेकिन कानून कहता है, कानून की मंशा है कि गवाहों के बगैर आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। पाकिस्तान में सजाएं वैसे ही कम हैं, 98% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। उसमें जो 2% लोग हैं जो सजा होते हैं, उनमें चश्मदीद गवाह का होना बहुत जरूरी है। अब चश्मदीद गवाह जब आता है अदालत में या FIR में, तो उसने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। वो सबसे पहले कि उसने जब गवाही देनी है तो वो गवाही उसने ऑन ओथ देनी होती है, यानी कसम उठा के देनी होती है, उसने अल्लाह की कसम उठा के फिर उसके बाद वो गवाही देनी होती है। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर हम गवाह डाल देंगे तो कल कला झूठी कसम उठानी पड़ेगी, झूठी गवाही देनी पड़ेगी, तो फिर हम क्या करें। तो भाई ये कानून की मंशा यही है, कानून का बुनियादी उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि गवाही आपने कसम खा के ही देनी है। और गवाह नहीं है तो आपको आपका मुलजिम भी पता है, वो छूट भी जाएगा। तो यहाँ पे छूट झूठी गवाही का फिर आंसर सामने आता है, तो उसकी किसी मौलवी साहब से आप पूछें, वो आपको सही वजाहत देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कानून बताने बैठा हूं जो कि इंतहाई जरूरी है। गवाही क्यों जरूरी है कि अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक ने जो जुराइम और उनकी सजाएं तजवीज की हैं, बताई हैं, तो उन सजाओं को दिलवाने के लिए अल्लाह पाक ने एक क्राइटेरिया भी सेट किया है। और वो क्राइटेरिया ये है कि जी आपने अगर किसी जुर्म को साबित करना है और उस पर हद का लागू होना, हद क्या मतलब, वो सजा जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत में बता दी है, उस सजा को दिलवाने के लिए क्या तरीका कार फॉलो किया जाएगा, ये हमें कुरान बताता है। अब अगर आप मोटी मोटी मिसाल लें और जिना की एग्जांपल लें, मिसाल को अगर आगे रखें, तो कुरान कहता है कि अगर किसी शख्स ने जिना किया तो उसको संसार किया जाए अगर वो शादीशुदा है। अब संसार करने के लिए जो क्राइटेरिया बता दिया है वो 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे जो पूरा उतरते हों उनके बारे में बता दिया। अब 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे पूरा उतरने के मुताबिक मतलब ये है कि 4 लोगों ने उनको जिना करते हुए देखा है और वो 4 मर्द जो हैं वो बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। अब इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखने का मकसद ये था कि कोई किसी पे झूठा इल्जाम जिना का लगा के उसको सजा ना दिलवाए। तो आजकल के दौर में आपको ऐसे 4 लोग कहां मिलेंगे। तो इससे हमारे जो कानून है पाकिस्तान का, वो इसी चीज से जो है इनसार लेता है, इसी चीज से तकवियत लेता है कि जहां पे कुरान ने इतना सख्त क्राइटेरिया रखा है किसी जुर्म को साबित करने का, वहां पे हमारे कानून ने भी फिर सख्त क्राइटेरिया रखा है जुर्म को साबित करने का। क्योंकि कानून ये देखता है कि एक बेगुनाह अगर सजा हो जाए खुदा न खास्ता, तो उससे बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को बरी कर दें। एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को सजा दे दें। मैंने बारहा अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस में देखी ये बात, यानी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, शायद इतना 3.5-4 साल ही मैं प्रैक्टिस से मुझे जुड़े हुए हो गए। इसमें एक चीज मैंने देखी है कि मेरे सामने कोई तकरीबन 10-12 ऐसे केसेस गुजरे होंगे जिसमें सजाएं हुई हैं, कत्ल के केसेस जिसमें उम्र कैद, एक आध अगवा का केस था जिसमें 10 साल सजा हुई। बाकी कत्ल के केसों में जो सजा हुई है, तो वो सजाएं मैंने देखी, तो उन सजाओं में तकरीबन हमारे पास 10 केसेस मुझे याद पड़ते हैं। उन 10 केसेस में एक केस जो मेरे सामने गुजरा, उसमें 100% बेगुनाह शख्स को उम्र कैद की सजा हो गई। अब वहां पे बेगुनाह शख्स जो है वो सजा हो गया, कत्ल किसी और ने किया था उसकी फैमिली में से, दावा उस पर हो गया, बाद में साबित हो गया केस और उसको सजा मिल गई। अब ऐसी सूरत में अगर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है तो ये पूरे के पूरे हमारे सिस्टम पे एक धब्बे की सूरत में नुमा हो जाता है। इसीलिए रियासत की कोशिश होती है कि वो बेगुनाह को सजा देने के बजाय 100-150 गुनहगारों को खैर छोड़ दें। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अगर किसी ने कत्ल कर लिया है तो वो 1.5 साल जेल में गुजारे और उसके बाद उसको आप छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि वो जो सजा दिलवाने का क्राइटेरिया है वो इतना सख्त है कि अगर उस तमाम तर क्राइटेरिया पे आप पूरे उतर आते हैं, वो तमाम तर लवाजमात आप पूरे कर लेते हैं, तो फिर सजा आपको दिलवाई जाएगी।
اور اس کی بنیاد آپ خود رکھتے ہیں. پھر لوگ وکیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ ملک میں سزائیں نہیں ہیں, عدالت ہے. کوئی کہتا ہے عدالت ایک بھوسے کی مانند ہے, وہ اٹھاؤ جیب میں ڈالو چلے جاؤ. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. مختلف قسم کی آراء جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں لوگوں کی. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ریاستی مشینری کو جو سٹارٹ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے, اور آپ نے سرے سے کیس کی بنیاد غلط رکھی. اگر آپ ایف آئی آر درج کرنے گئے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ قتل ایک نے کیا ہوتا ہے, اس کے گھر کے تین بندے بھی ساتھ میں نومینیٹ کر دیتے ہیں, بے گناہ, آپ کا کیس کا بیڑا غرق وہیں پہ ہو جاتا ہے. چشم دید گواہ نہیں ڈالتے, ڈر کے گواہی نہیں دیتے کہ جی قسم اٹھانی پڑے گی, کیس کا بیڑا غرق وہاں پہ ہو جاتا ہے. پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, پشتوں کا علاقہ ہے, تج مج والی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, نہ نہ نہ یہ وہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی غیرت سامنے آ جاتی ہے, کوآپریٹ نہیں کیا جاتا, میں اپنا بدلہ خود لوں گا, زبق پلخ پل بدلہ پلا خالا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں خرابی کا سبب بن جاتی ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ پولیس تھانے چلے گئے ہیں, آپ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, تو ایف آئی آر کو سوچ سمجھ کے درج کروائیں, کیونکہ آپ کے پورے کیس کی جو بنیاد ہے وہ اسی ایف آئی آر سے شروع ہوئی.

0: Welcome to Radio Awan 88.4.
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
2: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
4: कुला तहुनन परिख्तियख कुल इखकारी
5: अस्माख कुले बगवली नखकारम चिकला नमी सिफात पिटी क्रीम इस्तेमाल अवल शुरू करी दी जमा द मखना द दने द गुना तरसीरी और द मख तुरवाली बिल्कुल खत्म शवी दी।
4: वही अल्लाह दुमरा जर सिंगा
5: अस्मा सिफात ब्यूटी क्रीम यो हर्बल और मायरी प्रोडक्ट दी जे 5 दिन इस्तेमाल वालू सरा जमा द मखना डोले मसले खत्म शवे।
4: वाह ब्याहु जहम गुआनम जे जमा मखस्ता पशान खैस्त शी कुला उस दारा तो वया जे सिफात ब्यूटी क्रीम बा मुंगता चिरत मिलवीगी।
5: सिफात ब्यूटी क्रीम बस तासुता हर कॉस्मेटिक्स इन जनरल स्टोर की पासने सरा मिलवी।

0: जानते हैं नवरंग, देखे हैं कभी?
1: नहीं देखे, नाम सुने आपके।
0: नाम सुना है, गाहक नहीं आ रहे इधर? कपड़े वाले दुकानदार तो बहुत नौशहरा आ रहे हैं कपड़ों के लिए, तो
1: हम तो इधर ही बैठे रहते हैं, जो हमारे वो दूसरे लोग है वो जाते हैं।
0: अच्छा, आप ज्यादातर इधर नौशहरा में काम करते हैं?
1: अपनी दुकान में होते, रखे हुए लोग।
0: तो इसमें के कोई प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, यूज किया है?
1: अगर को समझ आएगी तो यूज करेंगे।
0: ये तो बात है, आप रेडियो सुनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि पश्तो में क्या बोल रहे हैं। हम तो प्रोग्राम करते हैं, क्राम वही करते हैं, नाम वही करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चले कि ये क्या बोल रहे हैं।
1: तो आपका नंबर याद रहता है हमें, 0384383।
0: हमारा नंबर तो VIP नंबर है, हमने जो नंबर लिया था जिस टाइम तो हमारा तो VIP नंबर है।
1: बस आप बार बार बताते हो, यही याद रहा है बस, इससे आगे कोई चीज याद।
0: चलो ठीक है, इंशाल्लाह आप हम इधर का मैसेज में आपको दुकान का नंबर सेंड करते हैं, फिर उधर से इसमें प्रोडक्ट ले यूज करें इंशाल्लाह, फिर और भी हर रोज फिर सुनते हो गया और हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह
0: अल्लाह करे। ओके, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह
0: हाफिज। बिल्कुल अवरी दुन को दा कालर शिकुम वो दा दे नौशेरे वो वही ची यार जदी मैं वाली हूँ नौशेरे ची माँ कारी वो पश्तो बिल्कुल न पाए रहा हूँ ब्याह ता प्रोग्राम सरमा दो रमीना दा तब चिकला हाँ प्रोग्राम क्या वो त नंबर वाए नो माँ ख्वाहिश हो ची यार जता सर खबर है नो माशाल्लाह उर्दू खाल की ची माँ आवाज न पेजनी और इसमें अपने लाला का डेर प्रोडक्ट उन्हें न दा खबर वो इनशाला इनशाला उस दिया बाद खबर सी जिसका ची दुम रमीना दा मुझ प्रोग्राम सरा नो इनशाला अखबल व खबर सी बे मुरा प्रोडक्ट या अगर यूज की नो बे बेमीने इनशाला नो रहा ज्यादा सी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, खैर जंगीर भाई, खैर बराबरी,
0: ठीक ठाक खैरियत जी? सो खबर है क्या हुकुम जी? ना
2: वजीरिस्तान।
0: वजीरिस्तान ना खबर है क्या? सनामा दे दा सरंगे चल दा से बराबर है।
2: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में वारो द ढेर फंद हो रहा है खबर
0: है। अच्छा माशाल्लाह, वजीरिस्तान चो बनन सबा द तोरे तोरे शिकुमे अली फारे दी ओई गबाद मंदती दी जवान देख वो सीजन ही
2: गोरगोरे लागे दिल के माशाल्लाह ढेर खम समझा
0: है। गोरगोरे हो देना इलावा दी कना हो माशाल्लाह। वजीर जुनूबी वजीरिस्तान ना खबर है क्या? शिमाली ना
2: शिमाली वजीरिस्तान।
0: अच्छा शिमाली चो ब्या बिल्कुल गोरगोरे और जुनूबी वजीरिस्तान चो कुमवाने सेड दा नो देश ब्याद नोर में वे डेरे से आती थी वैसे घरों से मुड़ा गोरगोरे टोला ऊ का ना नफेद ना मुड़ा मलगरा दा यो मिराली सरा तालुक था नफेद मलंग अगा ब्या कला कला दास के गरत हो किसी ब्या गोरगोरे कई मुश्त तस्वीर वाला री जो गोरगोरे पखे दी शुक्र अलहमदुल्लाए चल रहा ठीक ठाक मेरम साकी मिलावेगी, मिराली के मिलावेगी, हर साई मिलावेगी, वाले बने मिलावेगी मेरम साके हो माच कुमा बल कस तदी मुड़ावाल आगा द्रुमी नो अदनान भाई जी गाना बस पता हो रजा शाह कॉस्मेटिक स्टोर पता हो रजा शाह दुकान दिली दिलाए
2: दा
0: अमन मार्केट हो तवाई का एक अच्छेदा अमन मार्केट था का पाकिस्तान मार्केट था सच चेहरा तलाए नहीं मेरा शाह था दो दुकान था नहीं बहरहाल पेज अने रजा शाह कॉस्मेटिक देर मशहूर कस था तो कला हम आप मेरा शाह बाजार से छा ना पता क्या रजा शाह कॉस्मेटिक दुकान चेहर था नो टोल बेहता वो सही
2: बिल्कुल
0: इंशाल्लाह चिकलत ब्या शरबत राव रे इस्तेमाल के ब्या बदुआ गाने कवे
2: प्रोग्राम शरबात बोला मैं चिट्ठे
0: दामाने और जाना चाहिए दुमरा ज्याद काटने माता रजी का ना उदा खल की इस्तेमाल इदा वाले खल को तो रिजल्ट वार कही इंशाल्लाह सब ऐसी इस्तेमाल के बेहतर सारा हुआ है बाकी वाकई से ढेर जबरदस्त रहा है।

0: बिल्कुल, और उनको नवरंग बाजार से जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर, मनियारी बाजार, सराय नवरंग, देसरबाह, दिशमा टोल प्रोडक्ट तस्त मिलावेगी और दस कलाई दस बाजारी तस्तालता दिशमा प्रोडक्ट न मिलावेगी। बिल्कुल माचुम नंबर दा चिकुम हेल्पलाइन नंबर दा 0342 7333 1290 मैंने तस्त कल का वायसो इनशाला तस्त बजो दीजिए दुकानदारों नमूना ब्याओ दुकानदार ना तो दिशमा प्रोडक्ट अखलो इनशाला ओरिजिनल एक नंबर प्रोडक्ट चिकुम दुकानदारान से तो अखला दिशे इनशाला तो रस्ते धोखा मौका दा खबरें बने। उदय सरासरा अक्सर दस ही छे डेर खाइन दी उड़ना ही वही शियारा वहां पर क्ली छे चिन्हिस दो दुकानी नहीं दे लो जी माता उसका ब्याह चिकुम नंबर होता उस माओशा होते मा हेल्पलाइन।
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station, Radio Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.

0: 不会孤单。
1: This is radio station. Radio Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
6: तासोरे रेडियो अमन 88.4 टांग रेडियो अमन जीत की लगन
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
7: Aman Radio 88.4.